0: सच कह जो हुंदा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: खुरदी पानी सच है।

आधा दिए पूरन सतगुरु ज्ञान रहाओ। जित घट बसै पार ब्रह्म सोई सुहावा था, जम कंकर नेर न आवई रसना हर गुण गा। सेवा स्वर्ग न जानिया ना जा मैं आराध

गुर गुर सच्चा सिरजनहार गुर तुठे सब किछ पाया जन नानक सत बलिहार गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माहे अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवा को दीनी अपनी सेव रहा मिट गई चिंतपुनी मन आशा करी दया सतगुर गुणदासा दुख ना थे सुख आए समाए तील ना परी जा गुर फरमाए किछ पुनी पूरे गुर मिले नानक ते जन सो फल फले गौड़ी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ सांत शीतल भय कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते भय सुहेले जन्म जन्म के पिछड़े मेले रहा सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का विनस्या था सहज सुबाए बोले हर बाणी आज पहर प्रभ सिमरो प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवै कहो नानक जो हर गुण गावै गौड़ी महला पंजवा जिस सिमरत दुख सब जाए नाम रतन बसै मन आए जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन बखानी रहा एक बिन नाही दूजा कोई जाकी दृष्ट सदा सुख होए साजन मीत सखा करे हर हर अखर मन महलेक रव रहे सर्वत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिट्टी खुद दास नहा सर्व कल्याण सुख सहज निधान जाके हृदय बसे भगवान औखद मंत्र तन सब छार करण हार हृदय महतार ताज सब परम भजो पार रहन कहो नानक अटल देह धर्म गौड़ी महला पंजवा सांत पाई गुरु गोविंद पाई ताप पाप बिन से मेरे पाई रहा।

कहा शीतला ते रखिया बिहारी पात हम तब कृपा धारी नानक नाम जपै तू जीवै साध संग हर अमृत पीवै गौड़ी महला पंजवा फिरकर मैं सो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे का सवारे रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करता रे बात साह साह सब बस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निर्भव होए पलो भगवान साध संगत मिलके नो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक होट पकड़ी प्रभ स्वामी गौड़ी महला पंजवा राग पिता प्रभ मेरे

आवे आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो अनेक पाव पाती छोड़े खत्म नाही, एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया, संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का सब कमाया। जीत ले ओए महाबिखारी सहज सोहेली बाणी, कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्बाणी। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पहे रोगा, कोट बिगन लाते प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा। प्रभ बाणी सब सुभा किया गाव हो सुन हो पढ़ो नित पाई, गुरपुरा पूरा किया रहाओ साचा साहेब अमित बढ़ाई। भगत बछल दयाला।

कर मैं सुख बाहर पुर सूखा प्रभ अपने भय दयाला नानक बिघन न लागे को मेरा प्रभु आ कृपाला सोर पहला पंजवा गए कले रोग सबरा से प्रभ अपना कृपा धारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत राज राख ले हो पाई मेरे को रब आ गए अरदास राव जो मामो सोई सोई पावो अपने खसम परोसा कहो नानक गुरु पूरा पेटियो मिटियो सगल अंदेसा सूरत महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता

0: Sunfire Radio. Good for your body, mind, and soul.
1: आपका स्वागत है हर संसार में अपनी आत्मा परमात्मा अकेले दुनिया और बाहर की दुनिया
2: आपको अपने आप ही चेक करवानी है आई एग्जाम आई ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज सन ग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जिकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए आपका करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 का दीदी पर कॉल कीजिए 905-456-2733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
3: ਜਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ।

0: आठ करें धर ध्यान, बाखा सब हर करें सब काम सफल हनुमान।
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, जो कार लगवानी है, तो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट, ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे, कहाँ पे, योगी ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगी ऑटो सेंटर के हैरी को, हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464। योगी ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगी ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
0: शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे।

मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रांटन, टेलीफोन 905-799-9400।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए मौसम बहुत ही बढ़िया है, वीकेंड है। अभी लॉन्ग वीकेंड तो नहीं है, लेकिन वीकेंड तो जरूर है। अब आपके लिए अगला वीकेंड मेरे ख्याल थैंक्सगिविंग का ही आने वाला है। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, बढ़िया क्वालिटी का आपको टीवी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, किचन की गैजेट चाहिए लेटेस्ट डिजाइन वाली, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो अब आपको अगर बढ़िया सोफा चाहिए, आउटडोर बारबेक्यू चाहिए, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको मिलती है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन वॉल्फ में है। और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-799-0045-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो अगर आपने कहीं भी मूव करना है, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो 416-524-8004 पर आप आज ही कॉल करके अपना ट्रक बुक कर लीजिए। 416-524-6704 मुझे कारें भी आपकी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में मूव करवाने में मदद करती हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए मौजूद है। और आपके लिए, लंदन वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलीजन डिपो गौर रोड पे आपके लिए खुल चुके हैं। तो आप और जानकारी के लिए मास्टर कलीजन डिपो डॉट कॉम पर जाइए। आपको किसी तरह का भी कलीजन का काम करवाना है, तो मास्टर कलीजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिएगा। तो अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। तो आज गजल आपको सुनाते हैं, कोई अच्छी सी गजल आपके लिए। बहुत अच्छी अच्छी गजल्स हैं जो जी सिंह जी ने गाई हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गजलें आपके लिए गाई हैं। तो आइए जरा रोमांटिक सा हो जाते हैं। और ये जो होठों से छू लो तुम, ये उन्होंने बहुत साल पहले कनाडा में रिचमंड हिल में बड़ा प्राइवेट सा शो हुआ था। तो वहाँ पे सभी लोग, हम लोग जमीन पे बैठे थे और जिगे सिंह जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने ये गजल गाई और हम सभी ने उनके साथ ये गजल गाई। वो एक बड़ा प्यारा सा मोमेंट था कि स्वीट मेमोरी है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, और दिमाग में वो सारे पिक्चर्स सामने आ जाएंगे जैसे जैसे ही आपके लिए ये गजल सुनेंगे आप, तो वैसे वैसे ही मुझे भी वो सारा कुछ याद आ जाएगा। असल में ये

हाँ, तो आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की ये बड़ी प्यारी सी गजल है। उम्मीद रखता हूँ आपकी जरूर पसंद आ रही होगी, तो एंजॉय कीजिएगा आप भी इस गजल को। तो अगली गजल हम आपके लिए सुनाने वाले हैं पंकज उदास। जी हाँ, पंकज उदास की बहुत ही प्यारी सी गजल है।

मांगी थी। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये गजल पसंद आई होगी। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, छोटी सी किचनेट सेटअप करवाना चाहते हो, नई किचन गैजेट चाहिए, बढ़िया टीवी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। बड़ी स्पेशल प्राइस और बढ़िया क्वालिटी, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे ब्रैम्पटन में मौजूद है। और दूसरी लोकेशन टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की आपके लिए ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो और फिर अपने ऑर्डर बुक कर ले। आप उनको कॉल कर सकते हो 9054590599004 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं HK मूवर्स। उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-6524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को आप कॉल कीजिए और बढ़िया बढ़िया सामान अपने घर में लेकर के आइए। अभी क्रिसमस आने वाली है, थैंक्स गिविंग आने वाला है, तो आप अपने घर को खूबसूरत लुक दीजिएगा। बढ़िया क्वालिटी की आप सामान लेके आइए अपने घर में टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से। और फिर मूविंग के लिए HK मूवर को कॉल कीजिए तो 416-524-6704 बहुत बढ़िया आपके लिए मूविंग करके देते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल करिएगा। तो ये है आपके लिए HK मूवर्स। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारी सी गजल है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, गुलाम अली साहब की। तो वेरी रोमांटिक वन, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल गजल।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आप भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो खूब एंजॉय कर रही हूँ, तो हम एंजॉय कर बता दे, रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे, तो इसी तरह का मनोरंजन करेंगे। आज गजलों का ही पूरा प्रोग्राम होगा, तो बहुत बढ़िया बढ़िया गजलें आपके लिए पेश करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही प्यारी सी गजल है, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल अलका याग्निक जख्म फिल्म से।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से सारा और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अगर आप किचन और वाटर वाल्व में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो आप नसीब फिल्ड को कॉल कीजिए 519-546-1260 519-546-1260। तो एक और बहुत ही प्यारी सी गजल, हीर, ये एक्चुअली हीर गाई है, बहुत ही प्यारी हीर गाई है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। जैसे मैंने कहा कि अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा देती हूँ। नानक राम चड्डी कला तेरे पाने स्वादा पला, हैव ए वंडरफुल डे एंड ए सेफ वन। एंड रात को 10 से 11 बजे फिर आप, तब तक नानक राम चड्डी कला तेरे पाने स्वादा पला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

0: से सच लाए सही लगा नानक नाम सदा सुख वाहे गुरु जी की फतेह। तलासरी महला तीजा लाला की कीमत गुरमत साची साचा विचार आपे वख से दे विचार।
1: बारह सितंबर 2026 जी बहुत ही प्यारा दिन ते बहुत ही पवित्र दिन क्योंकि अज जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पुरब दियाँ जो कड़ियाँ ने सो यह जो पवित्र दिन है जी लख लख वधाइयां अज ते इस दिन दियाँ होन। सो सन 1604 ईस्वी विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने पहले चार गुरु साहिबाना भगतां ते अपनी बाणी एक ग्रंथ विच दर्ज करवाई जिसनू आदि ग्रंथ दा नां दित्ता ते आदि ग्रंथ दे लिखारी भाई गुरदास जी सन। सो आदि ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश बाबा बुढ़ा साहब जी ने हरिमंदर साहब विखे कराया ते उस वेले जो हुक्मनामा ए आया सी संतां के कारज आप खलोया हर कम करावण आया राम। सो परमात्मा करे जी जो हर घर दे विच खुशियां होण हर जीवन दे विच नाम बाणी ते खुशियां दा प्रकाश होवे। सो बहुत बहुत जी वधाइयां। सो पहले प्रकाश दिहाड़े दियाँ सो परमात्मा हर घर दे विच जो है जिवें हुण सूरज दे नाल चानण हौली हौली जी होणा ते चलो इस दे विच थोड़ी जी हुण तब्दीली आई है थोड़ा देर नाल हुंदा पर जो चानण जो सवेर वेले हुंदा ये जो प्रकाश हुंदा सो इस सारिया दे मना दे विच होवे सारिया दे जीवन दे विच होवे। सो सवेरे सवेरे जी परमात्मा अगे इहो अरदास असी जरूर करिए जी। सो 12 डिग्री दा जी तापमान इस वेले दा है ठंडा मौसम है पर दिन पर अज मौसम दे हाल जी हमेशा दी तरह ही होणगे। सो सितंबर दा जो 12वां दिन है पर चलो शुक्र है कि जो मौसम है अले कह सकते हैं कि चंगे वाले पासे ही है। सो इन्नी दिने जैकेट की हजे कोई लोड़ नहीं है जिथे 26 डिग्री का तापमान अज दिने होना है धुप तिखी होनी है जी बदलवाई भी होनी है ते जी मीह दे संकेत अज घट ही ने। सो अज साफ मौसम रहेगा ते 6:54 जी 7 दे ही करीब कह लो कि अज दा जो सनराइज़ होना है सूरज ने अपनी हाजरी भरनी है ते फिर यह जो प्यारा दिन है असी शामी 7:34 सूरज ढलन दे नाल जी संपूर्ण करांगे। सो उम्मीद करते हैं जी थोड़ा यह जो अज का दिन है बहुत बहुत सफल रहेगा जो जी असी मन दे विच सोचिया है जो ठाणिया है जिस चीज़ की उड़ीक है जिस खबर की उड़ीक है उना सारिया चीज़ां ते परमात्मा जो है उबूर जरूर पावे। सो जी 12 सितंबर 2026 बहुत बहुत सारिया नू मुबारक होवे। सो इस दे नाल ही जी मैं थोड़ी जानकारी थानू यह भी जरूर दे देवां कि कल दा दिन 13 सितंबर 2026 तुसी याद रखो जी महान नगर कीर्तन। सो ये नगर कीर्तन जो है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिवस नूं ही समर्पित है। सो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माल्टन विखे ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਇਹ ਜੀ ਤੈਅ ਹੈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਵਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।

खत्म। ब्रैम्पटन विच खुल गया है लिवाना वेलनेस स्पा। साढ़े तजर्बेकार अते प्रोफेशनल थेरेपिस्ट्स, 100% हाइजीन एनवायरनमेंट अते एडवांस्ड इक्विपमेंट्स दे नाल तुहाडी सेवा ले हाजिर हन। साडियां खास सर्विसेज, रिलैक्सिंग अते मसाज थेरेपी, प्रीनेटल अते पोस्टनेटल, ग्लोइंग हाइड्रा फेशियल, लेजर हेयर रिमूवल अते बॉडी कंटूरिंग। अते हां, इंश्योरेंस बेनिफिट्स वाले ग्राहकां लई डायरेक्ट बिलिंग दी खास सुविधा भी उपलब्ध है। ता देर किस गल दी, अज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। पता 534 पार्कहर्स्ट स्क्वायर, ब्रैम्पटन। फोन नंबर 416-811-5385। लिवाना वेलनेस स्पा, जो रखे तुहाडी सेहत अते

मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत ना कोई, करने हारा करदा आपे, जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग सारिआं नूं। मैं हाँ तुहाडे संतोष कौर ते तुहाडा सारिआं दा निघा जिहा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही शोर रेडियो आवाज़ ते। तुहाडा ते साडा साथ बनिआ रहेगा ठीक एक बजे तक, ते तुसीं सुनदे रहो तुहाडा अपना प्यारा जिहा शोर रेडियो आवाज़।

0: अच्छा लगता है पंकज
1: जी
0: जी।
1: जी जी
0: सो सारे कॉल करके सानू कितना हौसला बताते हैं। सो बहुत ही वधिया वधिया साडे कॉलरस है गया, साडे जेडे फैमिली है गया, सानू सपोर्ट करते सारे कॉल्स करके, ते बहुत ही सोने सोने आंसर्स भी आ रहे हैं।

0: ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚਾਰਜਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ?
1: Starting ji with $55,
0: just only $55. You guys are also paying rent.
1: Oh, too much.
0: Salary to your team members. Aur unhone bhi kuch bachana hai, medicated oil. So agar tusi dekhoge na, the pocket ji hardly $15 hi pende honge. So tusi sahne support karni hai apne businesses di, aur tusi ja ke dekhni hai ki Briji ji di service kivein di hai. Aur assi ta hamesha jande rehnde hai Briji ji kol. So main ha third eye wali Briji ji, hum bahut jaldi aa rahe hain aapke paas. So aap please apna number do baar Punjabi mein aur do baar English mein bata dein.
1: Sure. 647-619-1369 647-619-1369 647-619-1369
2: We are located near to Martin Gurudwara, 2686 Slough Street, S-L-O-U-G-H Street.
0: ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜੀ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਜੀ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ
2: ਕਰੋ। Ayurvedic doctors and Ayurvedic practitioners from Kerala, and then we are doing the authentic Kerala Ayurvedic therapy.
1: Ji.
2: 647-619-1369 Cheso Santali, Cheso Unni, Tera Unnathar.
1: थैंक यू सो मच ब्रिजी जी। आई थिंक आप जो रिट्रीट आप केरला का यहाँ लेके आए, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, यू नो काफी यू नो यूनिक है। तो आप जरूर वो जो भी हमारे लिसनर्स हैं, आज जो भी हमने मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है, उनको एक फ्री मिलेगा। तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और ब्रिजी जी का जो भी थेरेपी फ्री देने वाले, वो उसका लाभ लीजिए और जाके देखे आइए। प्लस जो भी बाकी रेगुलर कस्टमर्स है वो अपॉइंटमेंट के साथ चलिए।
3: जी, सैटरडे संडे वी आर ओपन
0: 7 ब्रिजी कॉल पहुंचना है। और पंकज जी, जी, जी। अभी सॉन्ग लगा रही हूँ, आपने बताना है मैं किसके लिए ये वाला सॉन्ग लगा रही हूँ।
1: जी जी जी।

0: तो उनको मिलता है जी पिज्जा शेफ की तरफ से, तवा किचन की तरफ से मीडियम पिज्जा बिल्कुल फ्री
1: जी। सो असी तवा किचन दी टीम नू इनफॉर्म कर देंदे आ तुसी आपदा पिज्जा अज दी डेट ते ही पिक करना है, यानी कि एक हफ्ते बाद जाओगे। ऑफर वैलिड अंटिल टुडे मिडनाइट
0: जी। और दूसरे विनर आई थिंक जो फर्स्ट लेडी ऑफ द डे थी जिन्होंने कॉल किया है, तो उनका मैं दूसरा मतलब जो ड्रॉ है वो देना चाहूंगा, क्योंकि मतलब मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि जो लेडीज है वो भी कॉल करे। ठीक है, जसबीर कौर धालीवाल इनको सेकेंड जो प्राइस है वो जाएगा।
1: जसबीर कौर धालीवाल जी, तुसी पंकज जी नु कॉल कर लियो। पंकज जी अपना नंबर दस दो ताकि असी तुहाडी ओरिजिनल सेशन बुक कर सकांगे।
0: जी मेरा नंबर है जी 437-388-2327 पे आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके अब्रिजी के साथ जो अपॉइंटमेंट है वो हम आपकी बुक कर लेंगे जी। तो जसबीर कौर धालीवाल जी,
1: जी थैंक यू सो मच। सारे ने पार्टिसिपेट किया, विनर्स तक कोई भी दो ही होने सी, बट मेरे नजर ते ते साड़ी रेडियो आवाज दी टीम ते सारे जाने विनर्स है जिन्होंने अज सानू कॉल किया ते साड़ी शो दे विच रंग लगाए। सो साडा शो तुसी ऑलवेज सुनना है मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 ते सैटरडे 10 to 1। ते हुण असी गल करदे आ एक गल जेड़ी सुन के सारे जाने अलर्ट हो जाओगे। सो ओ केड़ी गल हैगी है तुसी सारे गैस करना है मैं किदे बारे बोलना शुरू कर रही हूं।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: देर आर सिंगर्स देर आर परफॉर्मर्स एंड देन देर आर लेजेंड्स That has defined generations. The one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
2: Hello, AM 5:30 to tusi sun rahe ho Desh Pardesh Prime Time Radio.
3: Today vich live galbat kar layi hune call karo 905-564-6444.
2: Sunde
3: raho Desh Pardesh Prime Time Radio. Chalo AM 5:30 to.
4: Canada vich rehnde hoye har parivar ko लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
5: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो

0: 32, 55, 80, 93
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: ओ काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते,
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 9054502828, 905-450-2828।
4: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि किसी भी चीज की मकदार काफी नहीं है। तलबा से भरी हुई क्लास, शोर, इस सब बहुत ज्यादा भोजल महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में 6.5 बिलियन डॉलर की कटौती की है। हमारे बच्चे बेहतर सलूक के मुस्तैक हैं। हुकूमत से कहें हमारे बच्चों में सरमायाकारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
5: This is AM 530,

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: वेलकम टू रेडियो गोल्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ। तो सुनते रहे रेडियो गोल्ड, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा। सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर लम्हा है सोने की तरह की गोल्डन मोमेंट्स की मिठास रेडियो गोल्ड के साथ। Views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any ways reflect the views, ideas and opinions of Radio Gold. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम लेके। हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं। हर सैटरडे को ये प्रोग्राम आपकी नजर होता है। 12 सितंबर है आज का दिन, सैटरडे का खूबसूरत सा दिन। क्या खूबसूरत मौसम है, 22 डिग्री टेम्परेचर। इतना हसीन, इतना खूबसूरत मौसम हो तो फिर कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। हर वेले, हर वक्त शुक्राना शुक्राना और शुक्राना करते रहना चाहिए। आपका हमारा साथ साथ साथ रहेगा। पंजाबी हिंदी का मिक्स, पंजाबी हिंदी उर्दू का ये मिक्स प्रोग्राम होगा। और आपने कोई भी बातचीत करनी है तो हमारे नंबर है 416-233-7368। स्टूडियोज के नंबर है एंड माई नंबर इज 416-910-6000। इस प्रोग्राम में म्यूजिक होगा, गीत संगीत होगा और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए लेकर हम हाजिर हुए हैं। रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन होगी, मॉर्गेज की इन्फॉर्मेशन होगी, एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होगी कि सितारे आपके क्या कहते हैं। तो हमारे साथ रहें 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका और हमारा साथ साथ साथ। कोई भी गीत संगीत सुनना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस इन स्टूडियो और ऑन माई सेल नंबर। और नासिर जी मेरे साथ हैं आज स्टूडियोस में, इनसे बातचीत करेंगे मॉर्गेज के रिगार्डिंग, कुछ इनसे टिप्स भी लेंगे। और बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं हमारी कम्युनिटी के नासिर शाह। नासिर जी आपका तोड़ा स्वागत है निगा।
2: बहुत शुक्रिया सोनम जी। रेडियो प्रोग्राम सुनो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जिवें तुसी कहा जी रेडियो गोल्ड, रेडियो गोल्ड वाकई गोल्ड है क्योंकि लोगों के दिलों में वसिया है। पहले तुसी डिफरेंट चैनल हूँ, तुसी 530 AM ते काम कर रहे हो और बड़ा अच्छा लग्गिया तुहाडा जिहड़ा तरीका, तुहाडा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, वह तुसी एज ए होस्ट काम किया, वह जिहड़ी चीज़ हैगी वह सानू लोगों नू बहुत चंगी नज़र असी वेखने और बहुत तुहानू असी रिस्पैक्ट करने ओनली बिकॉज तुहाडा जिहड़ा टैलेंट है और तुहाडी जिहड़ी क्वालिटीज़ न वह सानू बहुत चंगे लगदे हन। ते सोनम जी अज असी बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारिया चीजा ते असी अंडरस्टैंड ते करने आ लेकिन दिल नहीं मनदा, समझ आंदी है, दिल नहीं मनदा। ते उन्दे वास्ते बहुत जरूरी है तुसी अपने आप नू पहले मेक श्योर करो कि तुहानू अपनी समझ आ गई है। अगर तुहानू अपनी समझ आ गई तो फिर तुहानू सारी गल्लां समझ आ जावंगियां। जदों तक तुहानू अपनी समझ नहीं आएगी तुहानू किसी दी समझ नहीं आएगी।
1: नासिर जी ए एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, एदे उपर असी गल्लबात वी करांगे। इक तां अपने नाल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और असी दुनियादारी च इन्ने उलझे होया कि असी सारी दुनिया नू खुश करन च लगे रहने आ बट असी अपने आप नू भूल जाने आ, है ना। और सानू पता ही नहीं है कि असी खुद नाल कनेक्ट होना है, अपनी सो नाल किस तरह कनेक्ट होना है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसीजर एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अज साडे नाल गलबात इस टॉपिक दे उपर करांगे और शुकराना बड़ा जरूरी है जिंदगी दे विच।
2: हां जी, है ना? देखो गुरु नानक साहब ने 20 रुपया नाल अपना लंगर चलाया सी।
1: बिल्कुल,
2: हुण पूरे वर्ल्ड च लंगर चलदा पिया। साडा भी यही बिलीव है, असी बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव नाल काम कर रहे हैं। तुसी अगर हो सके तो दवो, देन नाल तुहानू सुकून मिलेगा और उन्दे नाल तो जिहड़ा ओह सुकून होएगा ना ओह तुहानू अंदाजा ही नहीं हैगा। और मेरा बिलीव 100% हैगा जे तुसी एक वारी करके वेखो, अगर तुहानू नहीं यकीन आंदा, 1 रुपया या $1 किसे नू दे के वेखो, रब दे नां दा मैं कहना हुन्ना, ਤੇ 70 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
3: ਆਉਂਦਾ 100%।
2: ਉਹ 70 ਗੁਣਾ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਸ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ
3: ਨੇ।
2: ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਵਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
3: ਜਾਏਗੀ। जी, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थॉट। आज का पॉजिटिव थॉट भी यही है, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। सानू बहुत सारे एक्चुअली इट्स इन बिल्ट इन आस नैगेटिविटी एंड कंप्लेंट्स करनिया। कोई भी चीज़ साढ़े को 10 चीज़ा ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਟ 2 ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨੋਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਟ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਟੂ ਦੀਸ 2 ਥਿੰਗਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਫੋਕਸ ਔਨ 8 ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਐਂਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਂਡ ਓਵਰਕਮ ਵਿਚ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਂਡ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ yet to come. ਸਬਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੋ ਜੀਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਹਮ ਅੱਜ ਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੌਂਗ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇ। 416-233-7368 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੌਂਗ। ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ, ਰੇਡੀਓ ਗੋਲਡ 5 to 6 AM 5:30।
1: The views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
1: ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा. खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें. तीखे और तेज मसाले हर फीके पन को मिटा दें. लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर. 416-526-6800 416-526-6800.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रेड्स फर्नीचर दा ए मैसेज जरा

0: जो कैसी हो? How's your son doing?
1: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
0: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
2: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905-457-3232, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
3: लीडी गोल्ड में आपका स्वागत है और चले आपको लेकर चलते हैं क्लियर ऑप्टिकल, और वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी वेलकम, कैसे हैं आप?
4: बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सोनम जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे प्रोग्राम पे लेने का।
3: यू वेलकम जी। और चलिए, क्लियर ऑप्टिकल के बारे में बहुत बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, क्लियर ऑप्टिकल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड व्हाट इज द लोकेशन?
4: हाँ जी सोनम जी, क्लियर ऑप्टिकल है ये ब्रैम्पटन में स्टील्स एंड फाइनेंशियल के एरिया में, हमारी एक दूसरी लोकेशन भी है जॉर्ज टाउन में, एंड हमारा जो मेन बिजनेस है आपको दुनिया के तमाम अच्छे से अच्छे फ्रेम्स देना आई ग्लासेस के, सो ब्रांड नेम फ्रेम्स, आई एग्जामिनेशन भी करते हैं हम, एंड आपकी कोई ग्लासेस की रिपेयर करनी है या आपने अपने फ्रेम में ही लेंसेज डलवाने हैं, हमारे पास पूरा ए टू जेड सिस्टम है
3: जी। क्लियर ऑप्टिकल फाइनेंशियल एंड स्टील्स के कॉर्नर पे बहुत ही खूबसूरत स्टोर है, आप भी वहां पे जाकर जरूर आएं और एक चक्कर जरूर लगाएं एंड यू विल सी द डिफरेंस विद क्लियर ऑप्टिकल। वरुण जी जाने से पहले अपना नंबर दे दें एक बार फिर से।
4: सोनम जी हमारा नंबर है 905-457-3232, एंड सोनम जी एक बहुत ही जरूरी बात है मैंने आप हमारे लिसनर्स को बतानी है कि हमारे पास स्मार्ट क्लासेस की पूरी रेंज है, जो स्मार्ट क्लासेस जिनमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, कैमरास हैं, माइक्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन AI, आजकल AI के जमाने में आप अपनी ग्लासेस में भी इस चीज को इंजॉय कर सकते हो।
3: वंडरफुल, क्लियर ऑप्टिकल स्टील्स एंड फाइनेंशियल, थैंक यू वरुण जी, शुक्रिया।

0: इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज अ चैलेंज. कल यहाँ पे क्या हो किसी को कुछ नहीं पता. सो अज दे विच जिंदगी जीना ही जिंदगी है. जो थोड़ी जिंदगी अज हो रहा है दैट इज लाइफ. कल की होना है किसी नु कुछ नहीं पता. चलो थोड़ी जी थोड़ा सा हम चांद सितारों की तरफ चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है. और कुछ लोग इसे सुपरस्टिशन कहते हैं और कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं.
1: चांदनी बियॉन्ड स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं. ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव. तो आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं सितारों में छुपे होते हैं. और हर सितारा एक कहानी कहता है और शायद उनमें से एक कहानी आपकी भी हो. तो चलें सितारों से जुड़िए और खुद को समझिए.
0: बिल्कुल जी, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी क्या है. एस्ट्रोलॉजी को मैं हमेशा जीपीएस कहती हूँ, क्योंकि जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं ना, तो आगे हमें जीपीएस बता देता है कि आगे सड़क रोड खराब है या पुलिस खड़ी है या कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप अपनी गाड़ी को टर्न कर लो. एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही है. एस्ट्रोलॉजी में हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जिंदगी की प्रेडिक्शन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि आने वाली प्रॉब्लम से हम जूझ सकें. अगर हमें पता लग जाए कि हमारा ये वक्त बहुत खराब है या आने वाला वक्त थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, तो हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं. इट जस्ट टेल्स कि आपकी जिंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, चेंज कर सकते हैं कि नहीं, वो नहीं पता लगता. लेकिन आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बाय नोइंग व्हाट इज इन योर लाइफ. एस्ट्रोलॉजी में लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सुपरस्टिशन है. दोनों में डिफरेंस क्या है? हर वो चीज जिसे हम समझ नहीं पाते, क्या उसे हम अंधविश्वास कह दें, ये सही है? एस्ट्रोलॉजी और सुपरस्टिशन में आखिर फर्क क्या है? अंधविश्वास क्या कहता है? बस मान लो. जबकि ज्योतिष कहती है कि इसको समझो, ऑब्जर्व करो और फिर अपना निर्णय दो. ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति, राशियां, नक्षत्र, दशा, गोचर जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम देखकर जानते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक होगा. लेकिन अगर कोई कहे कि ये मत करो वरना बुरा होगा या ये चीज मत करो वरना 100% बुरा होगा, ये उपाय कर लो तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, तो वहां आपको रुकना चाहिए. एस्ट्रोलॉजी का मतलब है जीवन के पैटर्न को समझना, स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेने की कोशिश करना. कोई कहे कि उपाय कर लो तो रातों रात बदल जाएगी किस्मत आपकी, तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं अंधविश्वास होगा. क्योंकि सच्चा ज्ञान आपको जागृत करता है. आईना आपका चेहरा दिखाता है, लेकिन चेहरा बदलने का फैसला आपका होता है. इसलिए ग्रह संकेत दे सकते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपके कर्म, आपके फैसले आपकी कहानी लिखते हैं. एस्ट्रोलॉजी और सुपरस्टिशन में एक डराता है और दूसरा समझाने की कोशिश करता है. इसलिए एस्ट्रोलॉजी को से डरना नहीं, उसको समझना चाहिए. क्रिटिक्स भी अक्सर यही कहते हैं कि अगर सच में एस्ट्रोलॉजी है तो क्या फ्यूचर 100% एक्यूरेट बताती है? सवाल सही है, लेकिन शायद प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी में नहीं, हमारे एस्ट्रोलॉजी को समझने में है. सोचिए अगर मौसम का फोरकास्ट होता है कि बारिश की संभावना 80% है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के बाहर एग्जैक्टली 7:15 बजे बारिश हो जाएगी. फॉरकास्ट कंडीशंस और प्रोबेबिलिटी बताते हैं, वो चेंज भी हो सकता है. एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरह काम करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर रीडिंग सिर्फ आपकी राशि को देखकर ही नहीं, आपका लगन, प्लैनेट, नक्षत्र, ट्रांजिट, बहुत सारी चीजों को देखना होता है. एक ही प्लैनेट हर इंसान के लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं देता. हमने शनि का नाम बहुत सुना है कि शनि से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन शनि सिर्फ डराता नहीं, पनिशमेंट का प्लैनेट नहीं है. ये आपको डिसिप्लिन भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी दे सकता है. अधूरी एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन पूरी एस्ट्रोलॉजी को समझना असली चैलेंज है. थिंक, क्वेश्चन, लर्न एंड देन डिसाइड एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में हम आगे चल के बातचीत करते रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में आपको बताएंगे, फिर पामिस्ट्री के बारे में, आपके हाथ क्या कहते हैं, आपकी फिंगर्स क्या कहते हैं, आपके नेल्स क्या कहते हैं, हाथों की रेखाएं, हाथों का रंग क्या कहता है, बहुत सारी वास्ट स्टडी है। तो हमारे साथ रहें 5 से 6 एवरी सैटरडे 5:30 AM ऑनवर्ड्स। जी नासिर जी।
2: जी सोनम जी, और जिवें तुहानूं पता है असीं अगे दस रहे सां, अगर तुसीं वाकई चाहुंदे हो चंगा फूड खाना, लाहौरी कढ़ाई, लाहौरी फिश, लाहौरी चरगा ते या हलवा पूड़ी, किसी तरह का वैजी नॉन वैजी किसी तरह का तुसीं खाना खाना चाहुंदे हो, तुहानूं ओपन माई कैफे एंड कुजीन पाकिस्तानी 100% तुहानूं टेस्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग उत्थे पाकिस्तानी कुक काम करदे ने, कोई भी जानकारी लैनी है तुसीं कॉल करो 416-526-6800 ते कॉल करके तुसीं बुकिंग करा सकते हो। ब्रेकफास्ट करना है वीकेंड ते, तुसीं सैटरडे एंड संडे सुबह 10 to 3 PM तक तुहानूं मिलेगा ब्रेकफास्ट एंड ब्रंच, ते तुसीं उत्थे जा सकते हो। 14 आइटमां सिर्फ और सिर्फ 1999 दियां, $20 च 14 आइटमां तुहानूं मिलणगियां। ऐसो वधिया गल की हो सकती है तुसीं खा खा के थक जाओगे लेकिन वो फूड खत्म नहीं होएगा, इन्ना वधिया वह कहिंदे ने। और नाल नाल इह कहिंदे ने भी तुहानूं मज़ा नहीं आएगा तो पैसा एक ही नहीं लवागे। एक बार लाजमी जाओ, ट्राई करो, अपनी मर्जी का कढ़ाई गोश्त बनवाओ, गोट कढ़ाई बनाओ, सी कबाब, बारबीक्यू, थाई लैग, किसी तरह के तिकन चिके जो होता ना चिकन टिक्का, वह तुम खाना है, उनके वास्ते भी तुम इतने पहुँच सकते हो ओपन माई कैफे एंड कुजीन। एक और गल दस देना, कहने तुम अगर चाहते हो उ पार्टी करना 150 बंदे तक उन्हें को हॉल है, उनके म्यूजिक तुम्हें साउंड बिल्कुल फ्री मिल रहा है, सिंगर भी उत्थे हुंदा है, सिंगर भी तुहानू लाइव तुहानू सुनने च मिलेगा, तो असीं उत्थे पार्टी भी कर सकते हो 150 बंदे तक। तुहानू साउंड भी अजकल किसी जगह ते तुसीं गैदरिंग करदे हो $500-600 मिनिमम साउंड दा लैंदे ने, उह तुहानू फ्री मिलेगा। और 20 आइटमा सिर्फ 24.99 तुसीं 150 बंदे तक बुकिंग कर सकते हो। उत्थे कोई जानकारी लैनी है कॉल करो 416-526-6800। और उन्दे नाल नाल मैं मोड़गी दी जिवें गल कर रहे सां, मोड़गी जे अगर तुसीं किसी तरह दी लैनी है सोनम जी, मोड़गी असीं तुहानूं कहिंदे ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जदों तुसीं लगे रहिंदे हो किसी काम, सानूं तकरीबन 27 साल हो गए ने इस काम च। और कमर्शियल मोड़गी तुसीं पूरे GT तुहानूं साडे वर्गा एक्सपीरियंस नहीं मिलना, क्योंकि इन्ने सालों तुसीं कमर्शियल मोड़गीज कीतियां, रेजिडेंशियल मोड़गीज कीतियां। और कोई भी तुसी होटल लैना, मोटर लैना, गैस स्टेशन लैना, प्लाजा लैना, प्लाजे विच कोई यूनिट बाई करना, या तुहाडे को ऑलरेडी कमर्शियल मोड़ गई तुसी उन्हों रीफाइनेंस करा के उन्हें पैसे करना चाहते हो, उन्हें वास्ते कॉल करो 647-741-9000 कॉल कर सकते हो। और उन्हें नाल नाल तुसी अगर चाहते हो तुहानू कोई तकलीफ हैगी किसी तरह की, फैटी लीवर हो गया, या राती उठ उठ के वाशरूम जाना पैंदा, या तुहाडा बच्चों का कद नहीं वधदा पिया, या तुहाडी अखां च अंधेरा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਸੋਨਮ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,
0: ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰੋ 6475-5100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475-5100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ 5 lakh ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, 5 lakh ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਯੂਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਈਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 5 lakh ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 6477-741-9000। ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 lakh ਤੱਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ, 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6477-741-9000। ਔਰ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੋਨਮ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਪ ਟੂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, 6477-741-9000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 647-741-9000। ਜੀ ਸੋਨਮ ਜੀ,
0: ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਸਿਰ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਰਗੇਜ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਰਗੇਜ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ 416-910-6000। ਨਾਸਿਰ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਟਾਈਮ ਫਲਾਈਜ਼, ਹਾਂ
2: ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਸੋਨਮ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 416-910-6000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।

0: ਅੱਜ ਕੇ 21 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰੇਡੀਓ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਏਮ 5:30 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 3631 ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਵਨ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
0: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
1: ਮੈਂ ਬੋਹਲੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲੋਕ ਚੋਂ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ
1: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ
1: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੜਮੁਖ ਪੱਤੇ ਹੋ ਲਈਏ ਗੁਆਂਢ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੀ ਸਮਝਦਾ
0: ਜੀ
1: ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਕੁਛ ਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨੀ ਸਕਦੇ
0: ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ 416-233-7378 ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਵਾਇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮਨਾਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਸੋ ਹਿੰਟ ਦੱਸਤਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਸਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਲਈਏ ਜੀ ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਆਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਅਸਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲੋਨ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਇਹ ਲੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭੀ ਨੂੰ
0: ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਆ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਲੋਨ ਦੀ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਨਕ ਆਫਿਸ ਹਮਾਰਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮੇਂ ਹੈ 218 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਵਰਡ ਪੇ 8 ਸਾਲ ਸੇ ਹਮ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ एक तरफ आप स्किल डेवलप करते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, ऑनलाइन है आसान है
0: ओके,
2: कोई एज लिमिट नहीं है इसके अंदर। आप अपने घर के कंफर्ट से फोन पे लैपटॉप पे क्लास लगाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है बिजनेस का, अकाउंटिंग का। ऑन अदर हैंड आपको आपके खाते में गवर्नमेंट से 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक की फंडिंग आती है 0% पे, और लाइक कोई गारंटी नहीं है इस लोन पर। इस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं, इससे बढ़िया लोन एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि ये 0% पे है। बाकी सारे लोन एटलीस्ट 5-10% पे तो होते ही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, इतना सस्ता लोन मैं कभी नहीं सुनिया। तो आज कितने के बंदे की फंडिंग आई है जी जिन्हें तुम असिस्ट कर रहे हो?
2: बिल्कुल जी, कल फ्राइडे था, कल अप्रोक्सीमेटली 14 बंदों को फंडिंग आई है उनके खाते में, जिन्होंने जुलाई में बैच ज्वाइन करा था, और मतलब 1-2 महीने में फंडिंग गवर्नमेंट उनके खाते में डायरेक्ट डाल देती है। बच्चे ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट उस हिसाब से फंडिंग ज्यादा डालती है। तो फैमिलीज अगर आप हैं, आपके अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आप फैमिली हैं 4 या 5, आपको 1.5-2 लाख तक भी आता है।
0: अच्छा, तो तुसी दस्या है 0% इंटरेस्ट है जी?
2: बिल्कुल जी, अगर 2.5 साल का कोर्स है तो 0% है वो वाला पैसा, और 2.5 साल के बाद जो पहली किस्त स्टार्ट होती है तब ब्याज क्या है पूरे साल का 2.5%।
0: अच्छा,
2: मतलब $200 महीने का ब्याज $1,00,000 पे एग्जाम्पल के लिए। ऐसा लोन कहाँ मिलता है बताइए? 15 साल में उससे आसान से किस्तों में पे करते हैं। पैसे ना हो लोन डेफर हो जाता है। ऐसे नहीं कि गाड़ी के लोन पे गाड़ी उठा लेंगे बैंक वाले, घर के लोन पे घर उठा लेंगे। यहाँ पे किताबें थोड़ी उठाएगी गवर्नमेंट आपकी। इस लोन को हासिल करें, इन्वेस्ट करें, खर्चे चलाएं, रिफाइनेंसिंग या फिर क्रेडिट कार्ड के चक्रों से बाहर निकले
0: जी। सो जो जिदा आप गल की आ नागपाल जी की, जो लोन की असं गल सुनते हैं क्योंकि वैसे ही अजक लोगों के खर्चे वधे हुए आ, तो जो लोन की गल सुन के हूँ जिदा तुम दसिया तो हूँ समझ आता है कि 0% इंट्रस्ट तुम 2.5 साल तक कुछ पे नहीं करना, कोई इंट्रस्ट नहीं पे करना। तो इस करके जो इस लोन की गल करते हैं तो बेस्ट लोन तुम काउंट कर सकते हो क्योंकि अगे जा के भी इंट्रस्ट बड़ा बहुत मिनीम इंट्रस्ट हैगा 2.5 साल तो बाद भी जो तुम पे करना। ते जी तुसी दस्या भी एज लिमिट इहदे विच कोई नहीं हैगी, किन्ने भी साल दा कोई भी बंदा कोई कोर्स ले सकता
2: है? बिल्कुल जी, कैनेडा में चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम है, कोई एज पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बैंक की है, मेरी पॉलिसी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके उम्र लाइक अब मान के चले पेंशन पे है 75 ईयर्स भी है, और ऐसे क्लाइंट्स भी जिनकी उम्र 40-50 ईयर्स है। अप्रोक्सीमेट एज जो है वो 50 साल है हमारे क्लाइंट्स की।
0: ओके ठीक है जी। तो जिन्ने लोग जिन्होंने ये प्रोसेस थोड़े थ्रू किया है जी, तो जो वो सैकेंड कोर्स भी ले रहे हैं तो फिर वो थोड़े को क्यों आ रहे हैं जी? तो ये बारे थोड़ा सा जरूर दसो जी प्लीज।
2: हमारी फीस बड़ी ट्रांसपेरेंट है, काम होने के बाद में लेते हैं कितनी, $199। एक तरफ आपके पास 1.5 लाख, 1,70,000, $1,00,000 का 0% पे लोन आ रहा है, दूसरी तरफ आपकी जेब से जा के रहा है काम होने के बाद $199। कोई परसेंटेज कमीशन नहीं है। लोग ये भी बोलते भाई साहब परसेंटेज कमीशन क्यों नहीं है? भाई साहब मैंने आगे किसी को देनी नहीं, मैंने आपसे लेनी नहीं। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 2 नंबर का काम तो है नहीं, तो आप रिश्वत खिलाएंगे कैश देके मोर्टगेज वालों को
0: जी।
2: तो इसलिए साफ काम है, 8 साल से हजारों को असिस्ट कर चुके हैं। अभी भी जो हमें सुन रहे हैं ना उसमें से 20% हमारे क्लाइंट ही है। कोई कुंडी, कोई चाबी, कोई मीठी बातें नहीं है। कॉल अभी करें, असेसमेंट कराएं, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे ऑफिस पे आएं, एनरोल कराएं। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 16 सितंबर को, उसके बाद अगला बैच 1.5-2 महीने बाद होगा, तब तक तो फंडिंग आपके खाते में आ भी जाएगी अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे
0: जी। तो एक बार नंबर फिर तो दसिए जी, 437-264-3175। इस नंबर पर कॉल करके इस लोन के बारे कोर्सेस के बारे तुसी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। 437-264-3175 437-264-3175। जो काम थोड़ा हो गया, पहली चीज़ तो यह है, मैंने बहुत चंगा लग्या कि तुसी पढ़ रहे हो, तुसी कुछ सीख रहे हो, तो वो थोड़ी सरकार हेल्प कर रही है। सो तुसी पढ़ना चाहते सी, वेट कर रहे सी कोई कोर्स पढ़ना, कोई कोर्स करना, तो हुण थानू फंडिंग भी मिल सकती है, लोन मिल सकता है जिहड़ा कि बहुत अफोर्डेबल है। 437-264-3175 नंबर पर कॉल कर लियो जी, इन्हां दे ऑफिस दे नाल गलबात करके तुसी अपॉइंटमेंट सैट कर लियो, तो बाकी सारिया डिटेल्स तुसी इन्हां तों पुछ लैणियां। इन्हां दी फीस $199 थोड़े तो जो थानू फंडिंग मिल गई, लोन मिल गया उस तों बाद। नागपाल जी कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे तुसी?
2: जी कोर्सेज आसान है, एग्जाम्स नहीं है, असाइनमेंट्स हैं बड़े हमारे, लाइक मान के चले हाउस वाइफ हैं जो कर रहे हैं, उबर ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड लोग, डजंट मैटर एट ऑल। पीआर, सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन, स्किल डेवलप करें। ऑन अदर हैंड 50,000 से 1,70,000 लोन हासिल करें, कहीं भी पैसे को खर्च करें। हमारी फीस ट्रांसपेरेंट है, काम होने के बाद है, कोई मीठी बातें को चलाकी नहीं है इसके अंदर। हम लोग अगर आप कहीं भी जाएंगे, लोन आज के टाइम पे लोग पहले दुखी हैं
0: जी,
2: जिनसे वो लोन लेने जाते हैं वो उनको और छीनने के लिए बैठे हैं, बट हमारा साफ काम है गारंटी पे ठा करके एयर पे फीस बताते हैं, कोई चलाकी नहीं है। और हजारों को सर्च कर चुके, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं, कोई कागज नहीं हिलता, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, जो पागल बना देंगे कागज एडिट करके। नंबर 4372641375, 4372641375 होने कॉल करो, एस्टिमेट लो 4372643175, 4372641375।
0: जी जान, तो पहला एक सवाल हो रहा है नागपाल जी कि जेडे सारे लिसनर थानू कॉल करेंगे वो की एक्सपेक्ट करन, केड़ा पेपर वर्क उन्हां नू चाहिदा होगा थोड़े ऑफिस आने के लिए?
2: बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी ये। ओके, इसमें आपका NOA नोटिस ऑफ असेसमेंट 2025 का लगता है, हस्बैंड वाइफ दोनों का, नंबर 1। नंबर 2 मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, नंबर 3 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लगते हैं।
0: ओके,
2: कोई एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट ही नहीं लगता, क्या ही रेफरी करेंगे आप। इसलिए साफ काम है, साफ फीस है, कोई परसेंटेज कमीशन दो नंबर नहीं है। कॉल करें, प्रॉपर ऑफिस है, 6 बंदे काम कर रहे हैं आपके लिए, नहीं कि हम कोट पैंट पहन के आपको टिमोटर में बुलाएंगे मिलने के लिए। हमारे पास क्लाइंट आते बताते सर पहले एजेंट ने हमें कोट पैंट पहन के टिमोटर में बुलाया। हमारा साफ ऑफिस है, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज लेनी होती है, गलत काम करना होता है, हम साफ काम करते हैं, कोई चलाकी नहीं है। 4372641375 0% पे लोन हासिल करें, 1.5 से 2 लाख का, 4372641375 4372643175।
0: बहुत शुक्रिया नागपाल जी। सो थानू उही पेपर वर्क चाहिदा जी जिहड़ी ऑलरेडी इनफॉर्मेशन थोड़ी CRA दे कोल हैगी आ, नोटिस ऑफ असैसमेंट भी उन्होंने कोल हैगा, थोड़े बच्चों के बर्थ डेट एवरीथिंग उन्होंने कोल ऑलरेडी हैगा। सो उहदे विच कोई जिदा इन्होंने दस्सिया कोई हेरा फेरी नहीं, कोई ये नहीं भी आ पेपर बना लिया ओ कर लिया। सो ये बड़ा चंगी चीज़ लगती है। बाकी तुसी जाके गल करो, कोई कोई सवाल है 4372641375 नंबर पर कॉल करके गलबात कर सकते हो। थैंक यू सो मच नागपाल जी, नैक्सट सैटरडे फिर गलबात होएगी जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 4372641375